जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

0: सुन वालों की सेवा में मेरी तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है
1: भगवान
0: उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहदिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुन वालों आज शनिचर शनिवार का दिन है, 4 जुलाई का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को शुभ सुबह शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0825656560 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 0302-62-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और डीएबी प्लस रेडियो के जरिए भी आप सुन सकते हैं ये प्रोग्राम मिडर नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में और दूर दूर शहरों में। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए भी आप मेल भी कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से तुरंत हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त ब्रह्म।

रेडियो वेस में इसके जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो वेस में इसके जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, शनिवार का दिन है, 4 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और घड़ी की ओर देखा जाए 8:00 प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अबकी बार खास सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है सुरेश वत्कर और साथियों की आवाज में मिलकर ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहना।

भजन पेश की गए सुरेश वदकर और हैप्पी बाबा की आवाज में ये सुंदर भजन अभी आपने सुना। आज के ये प्रोग्राम में जो पेश की गई एक सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश हुआ है। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में और इस प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है, तार का नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार के नंबर पर भी रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। शनिवार का दिन है तो चले एक और सुंदर श्री हनुमान जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए अति सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। सुनने वालों, भजन यात्रा पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए, और वो भी आज शनिचर शनिवार 4 जुलाई का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। घड़ी की ओर देखा जाए 4 मिनट व्यतीत हो चुका है, सुबह साढ़े 8 बजकर। चले प्रोग्राम में आपकी बार खास सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है महेंद्र कपूर जी की आवाज में।

रेडियो एसबी एस की सर ये सुंदर और सुंदर भजन महेंद्र कपूर जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। महेंद्र कपूर के बाद प्रसून मुखर्जी प्रोग्राम में होगा जो मिलना है।

0: सुबह के प्रोग्राम में प्रोग्राम भजन यात्रा में सुंदर से सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है हॉलैंड देश के बीच में मेडर नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में डीएबी प्लस रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है आपकी मौत घर में आपकी घरों में।
1: द्वापर युग
0: विपिन सचदेवा
1: जन्म लिया
0: विपिन सचदेवा की आवाज में ये सुंदर

सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस बीस की गए। 11 मिनट बाकी है प्रोग्राम में सुबह 9 बजे में। चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए और खासतौर पर रेडियो SBS का ऐप पर जितनी ही सुनने वालों बस ऐप किया है उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए भी ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड के साथ ये आरती भजन पेश किया जा रहा है। श्री हनुमान जी की आरती आप सुनते ही

सुन वालों घड़ी की ओर देखा जाए 9:00 प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। सभी सुन वालों को एक बार फिर से वेलकम स्वागत किया जा रहा है। बाहर का मौसम की ओर देखा जाए धूप ही धूप का मौसम है। आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है। हो सकता है कहीं कहीं बादल छाया हुआ मौसम होगा, लेकिन मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम। मेरा टेम्परेचर तकरीबन 24 ग्राद होने वाले है, 24 डिग्री होने वाले है। तो आप सभी सुनने वालों को एक शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है। और यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। चले यहाँ से प्रोग्राम में पुरानी नखमे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। पहला गाना जो होगा किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में, फिल्म आ गले लग जा फिल्म का नाम है किशोर एंड लता जी की आवाज में।

जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था आ गले लग जा। 1973 का फिल्म, 1973 का फिल्म, किशोर एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। हम आपको ले चलेंगे फिल्म जवानी दीवानी, उसी फिल्म का ये गाना किशोर की आवाज में, किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है। शनिवार की सुबह की प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, 9:00, प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है, 11 मिनट ओवर।

की गई सॉन्ग बाय किशोर कुमार, द बेनिफिट एफ्रिक्वेंट वॉइस किशोर कुमार की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सामने ये कौन आया जो दिल में हुई है बस हलचल। शनिवार है 4 जुलाई और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से किशोर कुमार होगा।

में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में शैलेंद्र सिंह के आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। शैलेंद्र सिंह के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना। जमाने को दिखाना है फिल्म का नाम।

शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई, जमाने को दिखाना है फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आशा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रफी साहब की आवाज में गाना पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार एंड आशा भोसले, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। पुरानी नखमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 032-266-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है।

कुमारन आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL चले मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामकाज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में हर एक कामकाज किया जा रहा है। सभी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए टेलीफोन नंबर जो 24/7 आप सभी के लिए बराबर होता है 030-265-65-60। आशा भोसले प्रोग्राम में

द नाइटिंगेल ऑफ एशिया आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शहर उत्तराखंड हॉलैंडी से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। मुकेश एन शमशाद बेगम प्रोग्राम में मैं भौरा तू है फूल

मुखी ईसा और शमशाद बेगम के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए, मैं भौरा तू है फूल। खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए हैं। मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले, पुरानी नख में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की सरिया।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए गाना आज की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, आशा भोसले की आवाज में। अब की बार ये गाना उस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनवाओ भी सेवा में 10:00 प्रोग्राम में 8 मिनट व्यतीत हो चुका है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनवाओ की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है गुड मॉर्निंग कहा है सभी को नहीलो खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप हर एक को स्वागत किया जा रहा है। हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और खबर भी किया है कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और वो है एंटोफ शहर का रहने वाला राज खबर किया है कि वो प्रोग्राम को सुनते हैं। मोय आउटस्टैंडिंग सुपर मोय न्यूमर्स ऑपरेटियो SBS शुक्रिया धन्यवाद राज और एंटोफ शहर के अंदर में जरूर प्रोग्राम सुनते ही रहना। मोर्ख गुड मॉर्निंग तो बहुत से अंदर आते हैं लेकिन अगर आप प्रोग्राम भी सुनते हैं तो जरूर हमें इतला कीजिए रेडियो SBS का ऐप के जरिए। चले प्रोग्राम में लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है गोरा और काला फिल्म का नाम।

रेडियो SBS की जरिए लता जी की आवाज में जो फिल्म गोरा और काला, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में आप सुन सकते हैं सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए। और हॉलैंड के बीच में मिडन नीदरलैंड एंड प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में दूर दूर शहरों तक डीएबी प्लस रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम सुनाई देता है। राजन गिरधारी उत्तराखंड लाइट सराइन गिरधारी स्त्रात से राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। और आज भी प्रोग्राम में एक गाना मांग किया है आप सभी सुनने वालों के लिए, उत्तराखंड लाइट सराइन से राजन गिरधारी और वो भी गिरधारी स्त्रात से। तो चले मिलकर सुनते हैं फिल्म धर्मवीर का गीत मोहम्मद रफी एंड मुकेश जी की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए गाना मोहम्मद रफी एन मुकेशी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई और रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना उत्रेख लाइटरेन का रहने वाला उत्रेख लाइटरेन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का खास मांगी हुई गाना आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश की गई खास तौर पर रेडियो SBS के लिए मेरे लिए और हमारा भाई हमारा कोलेगा जो है ग्लेन रामबाली के लिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हम देख रहे हैं रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी खबर किया है कि रोटरडम शहर के अंदर में सबीना भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं सबीना ओकन हेल खुद मोर्फ अनहेल खुद वीकेंड अब ऐसे आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम है और आने वाले दिनों का मौसम जो है ये भी काफी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है टेम्परेचर ऊपर की ओर जाने वाले है कहीं कहीं आने वाले सप्ताह देर तक खराद होने वाले है देर तक खराद तो आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड ये वीकेंड जो है शुभ वीकेंड आप हर एक को बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से द माइटी मुकेश प्रोग्राम में दारिंदा फिल्म का नाम

गगन बस बीच के गए। द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। इस वक्त हमारा प्रोग्राम भी हमारा प्रोग्राम अलकमार शहर के अंदर में कमला भी सुनते हैं। कमला आपको भी नहीं लिखूं मोर्ख और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर अलकमार शहर के अंदर में सुनते ही रहना। Het is inmiddels 2 minuten voor 10:30. Studio tijd hoort u bij hem. सुनने वालों आपको जिस तरह से हर एक प्रोग्राम में हम आपको खबर करते आए हैं कि इस साल मिलन समर फेस्टिवल होगा 21, 22 एंड 23 अगस्तस 21, 22 और 23 तारीख अगस्त सौदा पार्क डेन हाग शहर के अंदर में द एर्स्ट एंड द ग्रोटस्ट मिलन जो सालों से होते आए हैं डेन हाग शहर के अंदर में सौदा पार्क डेन हाग में इस साल 21, 22 एंड 23 अगस्तस होने वाले हैं। अपना टिकट आप जरूर जाकर खरीदिए milansummerfestival.nl और ग्राम फरहुर स्टैंड के लिए बद्रैफन को खबर किया जा रहा है। अपना सामान आप भेजना चाहेंगे यहां पर या तो कोई स्टैंड कोई ग्राम आप भाड़ा पर लेना चाहेंगे लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए हो सकता है खुशौन भाई के बारे में। अगर आपको ग्राम स्टैंड भाड़ा पर लेना है तो जरूर milansummerfestival.nl वेबसाइट पर आप जाइए। Er zijn nog enkele kraampjes vrij. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. milansummerfestival.nl waar heb jij je op na. Kraam, Bharapar, Sten, Bharapar, Lidje. De eerste en de grootste milansummerfestival. Hollandisch die onder weer zo saloos en hoed hij is. En hoe heb je सौदा पार्क डेन हाग शहर के अंदर में अगर आपको इस साल मिलन में जाना है खादान इन द ग्रोट्स द मिलन जहां पर तरह तरह के पोडियम प्रोग्राम भी रहेंगे। अभी 11 बजे रिक्लाम आप जरूर सुनते ही रहना कुछ स्पेशल रहेंगे इस मिलन समर फेस्टिवल में जरूर अभी 11 बजे रिक्लाम आप सुनते ही रहना। लेकिन हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए milansummerfestival.nl अपना अजेंडा में नोट कीजिए। हॉलीडे पर आप मत जाइए वैकेंसी पर मत जाइए लेकिन जाना है आपको मिलन समर फेस्टिवल में। इस साल काफी हंगामा होने वाले हैं तरह तरह के डाउटलांस आर्टिस्ट आने वाले हैं लाइव ऑन स्टेज लाइव पोडियम पर। चले गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। एक बार फिर से आज की प्रोग्राम में द माइटी मुकेश होगा।

रेडियो SBS की सर ये द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सब ही सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, सुपरमार्केटों को दबाव, विपरीत शहर से ये खबर कर रहे हैं कि दुकान के अंदर में जबरदस्त अनबीडिंग ही अनबीडिंग रखा गया है। फैट्स सूर्यनाम से खुरून तो यहाँ पर सस्ती दामों में आपको दिया जा रहा है और तरह तरह की सामान दुकान के अंदर में जो आपको बोडम प्राइस में दिया जा रहा है। सुपर मार्केट को दबाग प्रिंस बर्नर्ड लाइन नंबर 54 यूट्रेख्ट सोलन में है। जरूर यहां पर आप तशरीफ फरमाइए। मोटर कार से आप आएंगे, गाड़ी से आप आएंगे, यहां पर फ्री पार्किंग है, यानी कि खरातस पार्किरन है। तरह तरह की आइस यहां पर भी इस गर्मी सा मौसम में आपको दिया जा रहा है, तो जरूर आप जाइए सुपर मार्केटों को दबाव के पास में। और आपको भी खबर किया जा रहा है कि हर रविवार दुकान भी खुला रहता है सुबह 11 बजे से लेकर के और शाम में 6 बजे तक। शहरी ट्रैक से रेडियो SBS का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बैना बैना एनन फिर तक यार हमारा प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है फनाउट इट मोस्ट स्टार्ट फॉर नीदरलैंड फनाउट मिड नीदरलैंड फनाउट इट हार्ट फॉर नीदरलैंड। चले प्रोग्राम में किशोर एन आशा जी की आवाज में ये गाना तुम मिले प्यार से।

अपराध फिल्म का गाना पेश की गई किशोर कुमार नाश जी की आवाज में तुम मिले प्यार से नहीं लमो यूनिवर्स। मौसम इतना खूबसूरत है तो गाना भी खूबसूरत होना चाहिए और वो हमेशा होता है रेडियो SBS पर। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे जो आज की सुबह की प्रोग्राम में पुरानी फिल्मी संगीतों का शुरुआत की प्रोग्राम में हमने पेश किया है किशोर कुमार की आवाज में जवानी दीवानी फिल्म का गीत सामने ये कौन आया जो दिल में हुई है।

की रहने वाली कमला के लिए पेश की गई है। ये गाना आज की प्रोग्राम में सुनना चाहते थे, तो इसी तरह से प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में पेश की गई। आसरो भी थे, गाना सुना और बेहद पसंद किया है। रोटरडम शहर के अंदर में रिया भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। सुतमेर शहर के अंदर में नेहा और रोटरडम शहर के अंदर में भी हारोल्ड हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसे आपको मालूम होने चाहिए डीएब प्लस द्वारा भी प्रोफेसर साउथ होलंग में हमारा प्रोग्राम भी सुनाई देता है। बहुत घर में घरों में आप सुन सक गए हैं। सभी जहां जहां पर भी प्रोग्राम सुनते हैं वेलकम, काफी सुनने वालों होते हैं। इंडिया भारत देश में भी सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। सूरीनाम देश में मॉरिशस एंड नटुलको किन हम देख रहे हैं। दुबई में भी सुनने वालों हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। थाईलैंड में जहां जहां पर भी जो भी देश में स्वीडन हुआ, जर्मनी हुआ, डाउचलैंड हुआ, जहां पर हमारा प्रोग्राम हमेशा जेन और मार्सल भी सुनते हैं। डाउचलैंड में, जर्मनी में और स्वीडन में भाई जॉर्ज और पूरा फैमिली हमारा प्रोग्राम हमेशा

और हमेशा सुनते हैं स्वीडन में। सभी को वेलकम और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। एंड नटुलक सूरीनाम देश में हेलन हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम हमेशा फॉलो कर।

रेडियो SBS के जरिए खास गाना भी आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था कातिलों के कातिल। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। द लेट सुपरस्टार धर्मेंद्र, हमारा फेवरेट एक्टर, जो इस फिल्म में काम किया, कातिलों के कातिल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, ओ मेरी जोड़ दी ओ मेरी मोड़ दी, मैं तो हो चुका बस तुम्हारा।

अभी अभी हमारा रेडियो SBS का ऐप पर आया है एक सुनने वालों जो इंडिया भारत देश अलीगढ़ में रहता है और वो है धर्मेंद्र चौहान। धर्मेंद्र चौहान आपको भी वेलकम हमारा रेडियो SBS का ऐप पर स्वागत किया जा रहा है और आपको रेडियो SBS का प्रोग्राम पसंद आते हैं बड़ी खुशी के बात है कि हजारों हजारों सुनने वालों में से आप भी एक सुनने वालों है जो रेडियो SBS का प्रोग्राम पसंद करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड। धर्मेंद्र चौहान इंडिया भारत देश में अलीगढ़ में हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। दुनिया की कोने कोने से बस सुनने वालों ऐप कर रहे हैं हमारा रेडियो SBS का ऐप पर प्रोग्राम भी सुनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। चले गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और होगा मोहम्मद रफी की आवाज में माया फिल्म का नाम। फिल्म माया का गीत पेश किया जा रहा है कोई सोने के दिल वाले।

गाना जो पेश किए गए कोई सोने के दिल वाले गीत जो भी आपने सुना पुरानी फिल्म माया 1961 का फिल्म 1961 का फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया गया। आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना बस पेश किया जा रहा है, आपको खबर किया जा रहा है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। हॉलैंडीज की समय सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। 2 घंटे लगातार आपके लिए पुरानी नख़मे पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। चलिए एक आखिरी गाना मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। कल रविवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी नख में आप सुनते ही रहना पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में।

रो मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण एनालका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, शादी से पहले फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2006 में रिलीज किया गया है।

आवाज में फिल्म का नाम शादी से पहले, शादी से पहले फिल्म का नाम, और उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गई, शब्द फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। सुने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। कुणाल गांजावाला एंड सुनिधि चौहान, शकलाका बूम बूम फिल्म का नाम।

कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। आज के प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना आशा उम्मीद है गाना आप सभी सुनेंगे और बेहद पसंद करेंगे। जावेद अली और साथियों की आवाज में ये गाना

पेश की गए जावेद अली और इंदु पांडे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। शौर्या फिल्म का नाम अब की बार अदनान सामियन सुनिधि चौहान की आवाज में आज के प्रोग्राम में ये गाना पेश किया।

सौरिया गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना रेडियो SBS का जो पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन हॉलैंडी से यूट्रेख्ट शहर से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। शिखर फिल्म का नाम 2004 में ये फिल्म रिलीज किया गया है। एक गाना उसी फिल्म का, उदित नारायण एंड अलका जी।

उदित नारायण और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है तो मतलब होते हैं कि लोकल टाइम का प्रोग्राम बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। इस प्रोग्राम में सिर्फ लोकल गाने, हो सकता है एक दो बैठक गाना, या तो शायद कोई रिमिक्स आपके लिए पेश किया जा रहा है इस खास लोकल टाइम का प्रोग्राम में। तो चले प्रोग्राम में ना ज्यादा वक्त लेते हुए पहला लोकल गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में उमर की आवाज में पेश किया जा रहा है। उमर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो वेस में इसकी जरिए जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आशनी और साथियों की आवाज में गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर पोपो की ओर।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर पोपो की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में मरहूम नदीम खान और उमर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मरहूम नदीम खान और उमर और साथ ही साथ साथियों के आवास में ये गाना पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। जब तक चले प्रोग्राम में सागर मलिक की ओर हम आपको ले चल

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे के गाना आपने सुना सागर मलिक की आवाज में और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं जहां पर भी आप इस वक्त हैं। तो चले प्रोग्राम में लोकल गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपकी बार ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्लैक बॉय मिस्टर ब्लैक की आवाज में। मिस्टर ब्लैक की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको खबर करना चाहेंगे कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 9322666611।

के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रानी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में शेरुत रख से हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से यह आवाज पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का लोकल टाइम का प्रोग्राम जो हमेशा बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं दुनिया की कोने कोने में। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर और आपको मालूम होना चाहिए नए नए गाने हमेशा अंदर आते रहते हैं।

सुन वालों, जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, नए नए गाने अंदर आते रहते हैं रेडियो SBS के पास। हर एक को मालूम है कि रेडियो SBS का प्रोग्राम बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं अच्छी साउंड में, अच्छी आवाज में, बस प्रोग्राम जो हमेशा पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं लोकल टाइम की खास प्रोग्राम में मोटी माला भोला सिंह की ओर। आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है जहां

हसरो मीठे की आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों बस खबर किया है कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं रेडियो SBS का संगीत भरी स्टेशन लाइव फन आउट एट हार्ट फन एडलांट फन आउट मिड एन एडलांट फन आउट एट मोस्ट स्टार्ट फन ए।

स्पीच की गए साब रोसू का संगीत पर अभी आपने सुना ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए। सुनने वालों चले प्रोग्राम में राजेश शिवनंदन की ओर। रेडियो SBS की जरिए

Sunnevallo Hark informatie kliem. Telefoonnummer 030-265-6560. Isi daar ki nummer par hamesha aap daar kar sakte hain. Hark informatie, Hark info lene ke liye. Salo se रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले मरहूम शहीद वाहिद हुसैन की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों में थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश की गए। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं जरूर है और जरूर इस प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में। अबीर की आवाज में आप सुनते ही रहना। अमित के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहे।

तकरीबन 2 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बसपी शुगम चले मुख्य इस प्रोग्राम में। रेडियो SBS Vanuit het mooiste stad van Nederland, Utrecht शहर से सालो से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का फुल डिजिटल स्टूडियो से

और रेडियो SBS के जरिए मुकेश के आवास में कासे को मिक्स बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं हॉलैंड देश के अंदर, हॉलैंड देश के बाहर, देश विदेश में। चले प्रोग्राम में एक चटनी गाना।

सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले बॉब मार्ली मिक्स।

रेडियो SBS के जरिए बॉब माली मिक्स आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032 62 66 11।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में संजय की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रहे न रहे चाहे हम और तुम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए आज की प्रोग्राम में एक बार फिर से सचिन की ओर हम आपको ले चलते हैं और ये गाना पेश किया जा रहा है, चुम्मा दे देना।

सुन वालों आहिस्ता आहिस्ता लोकल टाइम का प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। तकरीबन 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा और लोकल टाइम का प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी तकरीबन 2 बजे तक।

में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों एक आखिरी गाना आज की लोकल टाइम की प्रोग्राम में पेश किया जाएगी और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। अभी न्यूज और मौसमी समाचार के बाद RJ आंशलिक के जरिए बस प्रोग्राम पेश किया जाएगी। मैं आप सभी सुनने वालों से कल सुबह ठीक 8 बजे फिर मिलूंगा। मैं था आपका खिदमत गुजार अबीन। आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड और हमारा आज का प्रोग्राम सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 8 बजे भजन यात्रा।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

जो नहीं तो कुछ भी नहीं इस सॉन्ग दूर ग्लेन जॉन एंड कम टू द फिल्म बोलम है हाउ द फेदर मैट बर्थडे बैश सॉन्ग दूर यो यो हनी सिंह द फिल्म दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड

हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म जाने मन से। और अब आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह से, मुझे हक है।

जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फना से, देखो ना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

जीना भी क्या है जीना, तेरी बाहों में जीना. इसके साथ दोस्त सलमा आगा है बप्पी लहरी. En het volgende liedje in het programma Gietong Keleher is gezongen door Kamal Khan. Uit de film Ginny Wet Sennie komt Roeberoe.

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, और अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, इस खजों दूर जुबेन नौटियाल दे दी दिस सो मोय ना ना जुबेन हाउ फेदर मैट शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा ये रात ताल अद फिल्म कभी अलविदा ना कहना कौम तत लीजिए मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी आउट द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे एन खसाओ दूर जुबे नौटियाल कॉम्त होने लगा आउट द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना क्वम आओ द फिल्म क्यों हो गया ना, एन इट इज अक्तेर दूर विवेक ओबरॉय एन ऐश्वर्या राय। दी टाइम वारे से आन इट डेटे। Uit de film Want It komt het volgende liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

ना। दस बहाने करके ले गया दिल, द 2.0 वर्सी आउट द फिल्म बागी 3 इज गेसंग डोर शान, तुलसी कुमार, के विशाल दत्तलानी एंड शेखर अफजियानी। एंड दैट कम्स आउट द एल्बम तेरा चेहरा गेसंग डोर अदनान सामी खान, तेरा चेहरा जब नजर आए।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.